इस अंधार को मेटने के लिए गुरु नानक अवतार हो गया, जिसने किया सिद्क बेड़ा पार हो गया। पाप गिरासी पृथ्वी तौल खड़ा कर।

ए नरंकार ने तेरे वास्ते मिठे खरबूजे भेजे सन। तू ए अख दा बूटा ना समझे, ए तेरे लिए आए। शंका ना कर, तोड़ के खा ले, पर एक शर्त है, एक ध्यान रखी, किते पले ना बन नहीं।

पेट भर के रज के खाइया अखां दियां खखड़ियां वेख के निहाल होइया। गुरु नानक दी नजर हो गई अख दी खखड़ी ते। अंब ते अनार मर्दाना तोड़ तोड़ खाऊंगा। ऐसे अमृत फलां दा स्वाद लै रहा है।

के पले रिजक ना बन दे पंछी ते दरवेश जिन्ना तपका रब दा तिन्ना रिजक हमेश जो तेरी प्रारब्ध है वो तेनू मिली ही जाएगी पले नहीं बनना इसी तरह बचन।

वो जंतु कोई नहीं इसने छड़िया, सारे खा गया। हुण आदमियां नूं खाना शुरू कीता है, जेड़ा स्थिति भुलिया पटकिया इधरों लंघ जांदा है। वड्डा कड़ाया तेल दा भर के रखिया होया, उहदे विच तल के ते खा जाना।

आख्या तो निम्रता दे नाल बेनती कीती है नाले तो हर महापुरख दी संता महापुरखां दी सेवा करदा रहे रसोई दी सेवा करदा रहे जहां तैनू आप निरंकार आप नारायण कलाधार गुरु नानक सच्चे पातशाह आउणगे कलयुग दे विच उनां दे हथी तेरा उधार होवेगा पर आ शीशा नाल रखी अपने इस विचों अपना मुख वेख लिया करी जदों तैनू इदे विचों मनुखां वाला मुख नजर आवे ना समझ लई के अज तेरे उधार होण दा तेरी कल्याण होण दा दिन है उचारण करो श्री बड़िया बड़िया नू खांदा रहा पर अज जदों गुरु नानक दा दीदार होया ते वेखदा शीशे विचों अपना चेहरा तां देवत्यां वर्गा चेहरा नजर आया ओ सारी घटना जो सी ओ फिल्म वांगू अखां को लंघ गई ते नेत्रां तो जल नहीं रुकदा चरना ते डिग पिया ओ मेरा दे साईं बख्शिशां दे साईं।

हुन कृपा करो, मेर करो, दया दृष्टि करो, मैं कोई तुहाडी सेवा करा। ते जंगल विच जाके सोने सोने फल ले आया, धन गुरु नानक पातशाह जी दे अगे लिया रखे। धन गुरु नानक पातशाह जी ने अपना मेहर दा हाथ जदों कौड़े राखश ते रखिया, ना फिर देवता बना दिता, देव लोक विच भेज दिता। जा भई तेरे गुनाह बख्शे उचा।

ना पीजे बार बैठे हैं सुन ना पीजे रूपी माली रंग ना पीजे तीर्थ पविए नंग ना पीजे पेड़ मरे पिड़ सूर कोई बड़ा सुरमा होए अपने आप नू खत्म कर देवे रण विच रब नहीं पीजदा ना पीजे केते होवे तूड़ कोई अपने आप नू तूड़ भी बना लवे पर आखिर विच गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज सारंग दी वार विच कहंदे हन लेखा लिखिए मन के पाए जे तेरा मन ही नहीं होया जे मन विच दुई है तो फिर की कीता गुरु पिज जांदा है लेखा लिखिए मन के पाए नानक पीजे खाचे नाए इसलिए भाई अपने मन नू गुरु दे चरणा विच जदों भी लियाओ सब कुछ बाहर छड़ के आओ और आके की कहो मेरा मुझ में किछ नहीं गुरु नानक दे बख्शणिया कोई टाइम नहीं जे लगना जेड़ा आप छोड़ देंती करे जेड़ा अपना आप छड़ दवे अपनी हंकार कमांड छड़ के आखे की आखे तुसी भी आखो किरतन दी समाप्ति कर।

चोतरे बड़े प्रसन्न होए। भाई सहदे दा प्यार वेख के हिरदे नाल लाया, आख्या भाई दया सिंह देश नूं मोरां इहदी गरीबी कट दे। भाई सहदे ने हाथ जोड़ के आख्या गरीब निवाज मैनू तन नहीं चाहिदा,

सब समान मोनी धरती मोरे आकाश मोनी धरती मोरे आकाश मोनी धरती मोरे आकाश मोनी धरती

बड़ी डूंगी बाज है। साड़ी कीती सेवा सिमरण ते गुरु की खुशी की मोहर लग गई है, किवें पता लगेगा? गुस्सा ना करो, तुसीं इत्थे घंटा डेढ़ आए हो, दो घंटे कीर्तन, गुरु की मोहर इत्थे लगी कि नहीं लगी किवें पता लगेगा?

दाता एक है, दाता अनेक है। दाता और दाता विच बहुता फर्क नहीं। दद्दे नू कन्ना तत्ते नू कन्ना दाता, दद्दे नू कन्ना ते तत्ते नू कन्ना उत्ते टिप्पी पै जाए बन जांदे दाता। हुण गल सी दातार नाल जुड़ती, जुड़ गए दाता दे नाल। साहब कहिंदे दात हर तेनू मिलेगी, पर दातार नू याद करके। दाते दात रखी हाथ अपने, जिस भावे तिस दई, क्योंकि सब दाता उस मालिक दे हाथ विच ने, जो भावे दे देवे। भाई साहब जी दा एक वचन बड़ा कीमती है, आप दी झोली पावा, क्योंकि सतगुर बाणी विच कहिंदे ने सब दाता ही मालिक हाथ हन।

सतगुर सच दातार है। जिहड़ा सतगुर दाता है ना उन्हें ये दाता बख्शिया ने एक ते अमोलक जीवन दिता जिहदा कोई मुल नहीं। फिर इहदे नाल मोह अखी नक कन कर जिन्हें मूह दिता बोलन वास्ते, अखां दित्तियां वेखण वास्ते, नासकां दित्ती सुमण वास्ते, कन दित्ते सुनण वास्ते, हुण ख्याल करियो इन्हां विचों एक भी चीज ना होवे कि मनुख दी जिंदगी है, बिल्कुल अधूर है। आपां विचार इस गल दी करनी है कि वाह दाता जो दान तू दे सकना है कोई होर नहीं दे सकदा। मुंह बोलण वास्ते ना होवे साडा किसे नाल संबंध नहीं जुड़ सकदा, अखां वेखण वास्ते ना होण असीं संसार नहीं वेख सकदे, नासका सुंघण वास्ते ना होवे असीं महसूस नहीं कर सकदे, कन सुनण वास्ते ना होण ते असीं कुछ सुन नहीं सकदे। हे परमात्मा ये सब दित्तियां तेरियां दाता ने, तेरा कोट आन कोट धनवाद है, नहीं तेरे वर्गा कोई दाता मैं संसार विच वेखे। दद्दा दाता एक है सब को देवनहार, देंदे तोट ना आवही अगिनत परे पंडार, ओदे पंडार

नाने पूरण प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोड़ मड़ी मत भूल न माने तीर्थ दान दिया तप संजम एक बिना न एक पछाने पूरण जोत जगे कट में जगे कट में तब खालस काहे निखालस जाने रहे।

जो सबको मिल बोच है, खोज शब्द मिले खालसा सो गुरु हित लावे। झूठे गुरु दे पिछे जाण दी कोई जरूरत नहीं। सतगुरां ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं गद्दी देण लग्या इक गल कही सी, कहण लगे भाई साडा शरीर अज है कल नहीं होएगा, पर मैं तुहानू गुरु ऐसा दे चलिया जो इथे उथे तुहाडे हमेशा ही नाल रहेगा, हमेशा तुहाडी अंग संग सहायता करेगा। ओ गुरु कौन है? वो शब्द ही है और कोई नहीं। मत मन अंदर कोई ऐसा परम आ जाए, शब्द गुरु पवन गुरु, गुरु शब्द है वहां गुरु, गुरु शब्द सुनाया, शब्द कोई अड का गुरु नहीं, जब गुरु नानक ने नहीं आख दिता ए शब्द गुरु, जदों की सृष्टि बनी उदों का चले आ शब्द गुरु। ते साहब आखते ने खालसा सो जो गुरु हित लाव है, खालसा सो गुरु हित लाव है, खालसा सो मास

तेरा इन्हें की आख दी का किस नाम सिमर प्रभ अपना गुरसिख अमृत वेले उठ जा इशनान कर ते इशनान करके अपने प्रभु का सिमरन कर नाम दे विच लीन हो जा सिमरन दे विच जुड़ जा यही तेरी रहनी यही मर्यादा है यही गुरमत है कर इस नाम सिमर प्रभ अपना मन तन भय करोगा कोट बिगड़ लाथे प्रभ सरना पलते भले संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुपा

ठाठ तो उत्पन्न होना संपूर्ण जाति का राग है। वादी संवादी कुछ लोग मां सामन दे कई धात गंधार नुवादी संवादी बनते हैं, लेकिन ये गाण कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चाल यदि कोई होगी वादी संवादी भावे मां सावे भावे धात गावे।

अंदर कौतक वरता रहे। ब्यौड़ी च भाई पुराणा जी बैठे दर्शन करन चित कीता, उठे सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन बंधदी रही अग दी रोशनी विच वेखे कुरला उठे, साहबां दे शरीर ते पए हुए छाले सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नूं सिखां नूं फड़िया जोर दी झटका मारिया, साहबां ने नेत्र खोले मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहब कहंदे ने वापर रही ने मेरे शरीर ते जरिया ते इथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना, भाई गुरदास जी भाई पराना मालक दी रचना है, जो कर रहे है मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रही हां, तेरे कोलो नहीं सहन तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा। बादशाह मैनू तुसी आग्या दियो मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे कहन लगे भाई पराना जितन फना करना होगा जिन्हें रचिया आपे कर ले, तेनू फना करन दा फिक्र कित्थों पै गया, तू फना करन दियां ताकतां कित्थों आ गईयां तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणां विचों, ते साहिब हस के कहिंदे ने भाई पराणा जे मेरे चरणां चों तबाह करन दियां ताकतां तेरे कोल आईयां ने ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवा मैं नहीं कर सकदा। नहीं भाई पराणा, आपां कुछ करता पुरख की रचना विच कुछ बना सकीए कुछ उसार सकीए ते गल वखरी है, तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, ओदी रजा विच रहो। साहब उठे अपने आसन तो, उठे ते आके मोढे ते हथ रख दिता, सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पुराणे दे मोढे ते रखिया। ओ जिहड़ी अंदर जप तप दी शक्ति उछाले मारन लग पई सी सारी दबा दित्ती, ठंड वरता दित्ती। आ गए बाहरों पैरुए, उन्होंने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया बड़ा मारिया, पर मालिक दी बख्शिश कीती होई, धन गुरु अर्जन साहब दी बख्शिश कीती सहनशीलता सदका, फिर भाई पुराणे ने हाए नहीं कीती, सी नहीं उचारी। वाहिगुरू वाहिगुरू जपदिया होया बेसुरती तक तां पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जावे ना ते फिर हाए नहीं मुंहों निकलदी, शुक्र मुंहों निकलदा है, वाहिगुरू मुंहों निकलदा है।

कौड़ा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारखु होए जहरी कहावई। कौड़ियां विचों पैसे, पैसियां विचों रुपये, फिर सोना, फिर तकड़ा व्यापारी हीरियां दा आखरी स्टेज ते पहुंच गया। भाई साहब जी कहंदे ने हौले हौले तरक्की कीती ते सब तो उच्ची मंजिल ते पहुंच गया ओ व्यापारी, पर शुरू होया कौड़ियां तो। कौड़ा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारखु हो जहरी कहावै। जहरी कहाए पुन कौड़ा को बनज करे, पंच प्रवान में पत सटा घटावे। की वेखिया फिर ओई मैले कुचैले कपड़े पाए, ते थां थां ते होका देंदा फिरदा, ते कौड़ियां नाल फिर व्यापार शुरू हो गया। इतना हीरियां दा उच्चा व्यापारी हो के ते जिथों व्यापार शुरू कीता सी ऐसा धक्का लगा कि जिथों व्यापार शुरू कीता सी उथों फिर शुरू होया। लोग हसदे ने, मजाक उड़ांदे ने, कर्जे देण वाले सिर ते खड़े हो जांदे ने, लैण वाले भी। गुरु की साध संगत ओ मुसीबत विच फस जांदा है बंदा। लोग कहंदे ने आखिर तू कीता की। भाई साहब जी अपनी गल ते आउंदे हन, वचन करदे ने

लोक पर लोक बिखे ऊंच पद पावई। छाड़ गुरुदेव आन देव को सेवक होए, निफल जन्म कपूत होए हसावे। लोकां दी सेवा करदा, संतां दी सेवा करदा, देव देवतियां नूं मंदा होया मनुख उच्चे ते सुच्चे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणां विच पुज गया। पर की वेख्या, जेड़ा सीस गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अर्पण हो गया, कोई थोड़ी जी दुख सुख आ गया ते फिर थां थां ते भटकन लग पिया। कदी किसे संत कोल, कदी किसे कोल, कदी किसे देवी कोल, कदी किसे देवते कोल, ते फिर लोग मजाकां करदे ने, आ देखो गुरु का सिख किथे किथे भटकदा फिरदा। आ थोड़े दिन ही होए है, मैं एक प्रेमी गुरसिख नूं पुछया की हाल चाल है, कहिंदा कम तुर नहीं रहा, बड़ा परेशान हां। कहिंदा एक चिट्ठी आई है, ए भेजी है साई बाबा वालिआं ने, आख्या एदा जाप करो तुहाडे मन नूं भी शांति मिलेगी, ते नौ निधियां अठारह सिद्धियां आउणगियां। ते मैं क्या भोले मनुख की करदे फिर? कहिंदा जिथों नौ निधि मिले असीं ओदा ही जाप करना है ना। एक वारी प्यार नाल बोलिए ते नाल लिखिया सी एदियां 500 कापियां छाप के फिर होर ना पासे वंड। नबज वेख लैंदे ने ए सुहागण किवें अपने मालक नालों टुटे ते इनू पतित करिए। ते थां थां ते ऐसियां दुकानां हन, गुरसिख नूं बड़ा सावधान होना पैंदा, जिवें पति बिरता स्त्री सावधान हुंदी है। मैं क्या गुरमुखा, स्त्री सहुरे नूं भी मत्था टेकदी है, जेठ देवर दा भी ध्यान रखदी है, ओदा भी सत्कार करदी है, किसे संत नूं दुरकारना नहीं। सत्कार अदब हर धर्म दा करना है, पर जो स्त्री अपना मन ते तन अपने मालक नूं देंदी है, वो किसे दूजे नूं नहीं दे सकदी। इसे तरह अदब सारिआं दा कर, पर अपनी जड़ नूं ना भुल, नहीं तां मजाक दा कारण बन जाएगा। तू अज साईं बाबे नूं मनेगा, कल तेरे बच्चे थोड़ा बहुत ए भी सिक्खी तो पतित हो जाणगे ते मुनकर हो जाणगे। ना सिख ना हिंदू ना गोरे कुछ भी नहीं रहणगे, ते गुरु की साध संगत। गुरु रामदास पातशाह कहंदे ने, ए गुरु आप ही चाहे ता पल्ला पकड़ाए, नहीं तां असी सिख तां छड़ जांदे आं गुरु। बाबा फरीद जी भी कहंदे ने,

सिपाही निर्मल सिंह जी नागपुर वाले, सतगुरु महाराज कृपा करन, बख्शिश करन, आप संगतां दा ये नवा साल खुशियां खेड़ियां विच इसे तरह ही गुरु चरणा विच बतीत होवे।